अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, पवित्र गुफा तक के सफर में सभी तीर्थ यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता, शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते जो है आपका मन प्रसन्न रहता है, आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा और तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, आप में सकारात्मकता आती है। ईश्वर से यही प्रार्थना, आप सभी तीर्थ यात्रियों का ये जो पवित्र सफर है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पांचवा जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुल मिलाकर 5794 श्रद्धालु जो है आज वादी की ओर रवाना किए गए, जो 267 छोटे बड़े वाहनों में इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों में बालटल के मार्ग से 2304 श्रद्धालु शिवजी के दर्शन

कुल मिलाकर 5794 श्रद्धालु आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें 3887 पुरुष, 1211 महिलाएं, 20 बालक, 599 साधु, 76 साध्वी और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का आज पांचवा जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। आपको बताते चले, ये काफिला जो है पहलगाम के लांबर ग्राउंड से इसका विभाजन होता है, एक हिस्से को जो है श्रीनगर के ट्रांजिट कैब की ओर रवाना किया जाता है, वही दूसरे हिस्से को पहलगाम के नुनवन बेस कैंप की ओर रवाना किया जाता है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं को बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी आनाथ्योर भगवती नगर में से मैं आपके लिए आज तीर्थ यात्रा की जो रिपोर्ट है उसको लेकर हाजिर हूँ। और अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि किस तरह से हम आपको नई जानकारी के साथ अपनी रिपोर्ट दें और तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई बाधा न हो, उसमें किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं उसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट सामने आती है। तो मैं बताऊं आपको कि जम्मू के पहले आधारश्वर भगवती नगर से 5,794 श्रद्धालुओं का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया है यहाँ से। और अभी तक मैं बताऊं तो 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र यात्रा के लिए घाटी रवाना हो चुके हैं। ये इस पवित्र तीर्थ यात्रा का पहला हफ्ता है। इस दौरान प्रशासन ने शनिवार को और कल रविवार को पंजीकरण श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कुछ दिन तक अपनी यात्रा को रोकें, क्योंकि 9 जुलाई तक सभी पंजीकृत स्लॉट्स पहले ही भरे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ जम्मू में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। सैकड़ों की तादाद में रोज श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे थे। पिछले एक हफ्ते से लगातार रश जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन कल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कुछ दिन तक अपनी यात्रा को रोके, क्योंकि 9 जुलाई तक सभी पंजीकृत स्लॉट्स भरे जा चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बरस, जैसा मैंने कहा, कि बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत यात्रियों को ही निर्धारित संख्या के अनुसार आगे भेजा जाएगा। बिना पंजीकरण पहुंचे श्रद्धालुओं से फिलहाल सब्र रखने और अगले सप्ताह यात्रा की योजना बनाने की अपील रीजनल कमिश्नर जम्मू ने की है। जो तीर्थ यात्री पंजीकरण के बगैर लखनपुर से इस तरफ पहुंचे गए हैं, उन्हें लखनपुर में ही रोक लिया जाएगा। ये बात कल रीजनल कमिश्नर जम्मू ने एक संवाददाता सम्मेलन में बात कही। हालांकि कल दिन भर यहाँ तरी रिवर फ्रंट और महाजन सभा सहित अन्य पंजीकरण केंद्रों में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई थी। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद शाम 6 बजे हालांकि कुछ हल्की सी बारिश ने श्रद्धालुओं को थोड़ा आराम जरूर दिया और उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। इस दौरान शाम को तरी रिवर फ्रंट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देश भर से आए साधुओं का राम मंदिर और अलग राम मंदिर और दूसरे पंजीकृत स्टेशनों में अलग तरह का माहौल है। एक तरफ यात्रा पर जाने को बेकरारी, वहीं बाबा बर्फानी की बदकी में मस्त साधुओं साध्वी और एक अलग ही रूप में पूजा आरती करती नजर भी आई। वही दिन भर मंदिरों और विभिन्न धर्मशालों में यहाँ जम्मू में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है। इसी तरह बाजारों, चौक चौराहों पर भी तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से रौनक बनी हुई है। वहीं यहाँ बेस कैंप भगवती नगर से भी श्रद्धालुओं के जत्थे विराजमान हो रहे हैं और यहाँ यात्री निवास आधारश्वर भगवती नगर पर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच भी की जाती है। यहाँ पंजीकृत तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं मैसर हैं, जिनमें खाने पीने के अलावा योग ट्रेनिंग और पूजा अर्चना के प्रबंध भी रखे गए हैं। इधर महाजन हाल और अग्रवाल सभा में खास तौर पर कल भंडारे और लंगर लगाए गए। शहर में चारों तरफ बाबा बर्फानी की जय जयकार हो रही है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से शहर में मेले जैसा माहौल है। इधर जानकारी के मुताबिक मैं बताऊं आपको कि पवित्र यात्रा करने आने वाले बिना पंजीकृत श्रद्धालुओं को, बाबा बर्फानी के भक्तों को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में ही रोकना शुरू कर दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कल रीजनल कमिश्नर जम्मू ने श्रद्धालुओं को सब्र रखने की नसीहत दी है, क्योंकि जो श्रद्धालु है सैकड़ों की तादाद में यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं और एक अनुशासित तरीके से श्रद्धालु ये यात्रा कैसे चले और बाजाबता सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक चले, इसके लिए जो यहाँ की डिविजनल कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपील की है कि अभी कुछ देर तक सब्र रखना पड़ेगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में ही श्रद्धालुओं को रोकना शुरू कर दिया गया है। रविवार शाम तक लखनपुर में यात्रा रिसेप्शन सेंटर पर यात्रियों को रोका जाना शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को यात्रा फिर से प्लान करने की हिदायत देकर कुछ यात्रियों को लौटाया भी गया है। यहाँ से लगभग 5,000 तीर्थयात्री लखनपुर में अभी तक रोके जा चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यात्रा पंजीकरण ना होने से तीर्थयात्री निराश जरूर है, लेकिन उम्मीद का जज्बा अभी बराबर जारी है, क्योंकि एक गाइडलाइन के हिसाब से ये कोई निराशा उस लेवल की नहीं है कि यात्रा बंद हो गई, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यात्रा को आगे भेजा जा रहा है। घाटी की तरफ रश ज्यादा है, हर जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहा है वो तत्काल जो है पंजीकरण करना चाहता है, लेकिन अभी तक सभी स्लॉट्स पूर्ण हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं और पंजीकरण जो ऑफलाइन और ऑनलाइन है वो अभी बंद है। जब ऑनलाइन भी बंद है ऑफलाइन भी बंद है तो एक तरफ से जो तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं उससे रश बढ़ रहा है और जो हर रोज की जो संख्या है उसको सीमित तरीके से ही यहाँ भेजा जाता है घाटी की तरफ। तो इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए कल डिविजनल कमिश्नर ने यात्रियों को सब्र रखने की नसीहत दी है। तो कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान आज आधार शिविर बागमती नगर से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में बालताल मार्ग से 2304 तीर्थयात्री और वहीं प्राचीन पहलगाम मार्ग से 3490 तीर्थयात्रियों को यहां से रवाना कर दिया गया। हालांकि इस चक्के में पुरुषों की संख्या 3887 है, महिलाओं की संख्या 1211 है, बच्चे 20 हैं, साधु 599 हैं, साध्वी 76 है और लगभग 267 वाहनों में घाटी की ओर ये आज का जैसा पांचवा जत्था है, ये आज का पहले सप्ताह का ये घाटी की ओर रवाना हो गया है और अभी तक सूचनाओं के अनुसार ये जत्था बड़े आराम से और आसानी के साथ घाटी की ओर चल रहा है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जावेद विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए,
1: बहुत शुक्रिया।
0: श्रोताओं ये थे जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट्स दे रहे थे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता एस तारिक पहलगाम से जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं उनसे क्या कुछ अपडेट्स है आज के दिन के हवाले से उनके पास। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत शुक्रिया प्रिय श्रोताओं को और आपको मेरा शुभ प्रभात। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ के प्रतिमाओं की अध्ययन यात्रा सुखद तरीके से जारी है। आस्था और सफलता से भरे इस यात्रा में आज चौथे दिन सुबह 4 बजे लुनवन आधार शिविर से 5,500 से जायद और तकरीबन इतनी ही संख्या में पहलगाम के निजी होटलों और हट्टों में दीगर मौजूद यात्रियों का जत्था चंदलवारी पहुंच रहे हैं, जहां वे पंचकर्म करने के प्रक्रिया करके अगले पड़ाव की जानेब पदयात्रा शुरू करेंगे। विशेष पत्र हासिल करने के बाद यात्रियों के लिए चंदलवारी में दिन के 12 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है। शीशनाग और पंचतरणी में रात को ठहरे हजारों यात्रियों की अमरनाथ गुफा की जानेब चहलकदमी जारी है, जो थोड़ी ही देर में गुफा के ओर पहुंच पाएंगे। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 267 वाहनों के जरिए 5,794 यात्रियों का जत्था घाटी के ओर बढ़ रहा है। ट्रांजिट कब काजीगुंड तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचकर जहां से बालतल और पहलगाम के लिए अलग अलग जत्थे रवाना कर दिए जाते हैं, जिसमें पहलगाम राज्य रूट के लिए 139 छोटे बड़े वाहनों में 3,409 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा में बाबा बर्फानी की प्राचीन मार्ग पहलगाम की ओर रवाना किया जाएगा, जिनमें 2,448 पुरुष, 630 महिला, 362 साधु, 48 साधवी और 5 बालक शामिल है। वह 1 बजे तक पहलगाम में प्रस्थान करेंगे और रात को लुनवन बेस कैंप में विश्राम करेंगे। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पे अगर हम बात करें तो आंकड़ों के अनुसार बीती रात दर्शन प्राप्त करने वाले यात्रियों की जो संख्या थी 24,648 रही। इस तरह 3 जुलाई से कल शाम तक दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 56,027 पहुंच गई है। यूं इस वर्ष की यात्रा में आने वाले शिव भक्तों की तादाद 5,00,000 से होने की आशंका है। तो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम और इसकी गिरदनावा के साथ साथ यात्रा ट्रैक में मौसम खुशगवार है। इस समय पहलगाम का पवित्र गुफा में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन का तापमान 27 डिग्री बढ़ सकता है और रात का कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इतनी महत्वपूर्ण यात्रा और इसके प्रविष्टा पर नजर बनाए रखने के लिए यात्रा अफसर, कैंप डायरेक्टर, नोडल अफसर और खुद राज्यपाल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा निगरानी कर रहे हैं और हर मामले को बारीकबीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। जी इंतजामिया और यात्रा इंतजामिया के नेतृत्व में अमरनाथ यात्रा के समय पर निगरानी के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर्स का स्थापित किया गया है, जो हमेशा की तरह होता है। ये किसी भी मुद्दे या शिकायत के समाधान निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकरीबन तमाम भागों के नुमाइंदे कमांड सेंटर में तैनात होते हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज, JK पुलिस, CRPF, ट्रैफिक पुलिस, SDRF, NDRF, मौसम विभाग और सुरक्षा विभाग शामिल है। इस तरह यात्रा सुखद तरीके से जारी है। तो यात्रियों ने प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम पर संतोष व्यक्त किया है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि यात्रा में हमने कल भी सैकड़ों भक्तों से बात की है और इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया, तो अभी तक किसी भी यात्री ने इंतजाम को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, बल्कि प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्था और स्थानीय लोगों के समझदारी पर हर यात्री संतोष व्यक्त करते हैं। आशा है कि बाबा के द्वार दर्शन पाने पे आए शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और सुखद तरीके से यात्रा जारी रहेगी। जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: आपका भी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये थे एस तारिक, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से अपडेट्स दे रहे थे। जैसा कि ये भी बता रहे थे कि स्थानीय प्रशासन और नागरिक द्वारा जो सुविधाएं, जो सहायता तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध की गई है, उससे सभी तीर्थ यात्री खुश है। लोकल्स और गवर्नमेंट की ओर से जो भी इकदाम उठाए गए हैं उनसे सभी तीर्थ यात्री खुश है और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा यही कोशिश है, मुसलसल यही कोशिश है कि सभी यात्री जो है उनकी यात्रा जो है, चाहे वो भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक का ये जो सफ़र है, पहलगाम के प्राचीन मार्ग से या बालतल के मार्ग से जा रहे हो, दोनों रास्तों पर जो है आपको जगह जगह पर प्रशासन के अधिकारी मिलेंगे, लोकल नागरिक मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए पेश पेश रहते हैं।

कोशिश यही है कि आपकी जो यात्रा है सफल, सुखद और मंगलमय हो। आकाशवाणी शरण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम रिजवान गांधरबल से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने श्रोताओं तक विस्तार से यात्रा के हवाले से पल पल की खबरें पहुंचाएंगे कि यात्रा किस प्रकार से बालटल मार्ग से जारी है एवं पूरे क्षेत्र में वातावरण कैसा है तथा मौसम का कैसा मिजाज है। तो इस हवाले से अगर हम बालटल की बात करेंगे तो श्रोताओं, बालटल से पवित्र गुफा तक मौसम सुहाना है, पूर्व फजा माहौल है, ठंडी हवाएं चल रही है। इस बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा इस वर्ष देखने को मिल रही है, क्योंकि बीती रात 1 बजे से दुमेल कंट्रोल गेट से बालटल बेस कैंप तक यात्री कतारों में अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक 12,800 यात्रियों को गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया।
0: जी।
1: बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए यात्री काफी उत्साह में थे, खुश नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड्स हासिल किए और पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 10,249 पुरुष, 2,140 महिलाएं, 59 बालक बालिका, 42 साधु 22 साधिया एवं 288 सुरक्षा कर्मी भी थे। और इस दौरान अगर हम बात करेंगे तो बीती रात 1 बजे तक 23,231 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित बालटल बेस कैंप पहुंचे। तो इन यात्रियों में 17,860 पुरुष, 4,580 महिलाएं, 320 बालक बालिका, 130 साधु, 51 साधिया और 290 सुरक्षा कर्मी भी थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि शिवलिंगम का दर्शन करके जो भी यात्री बालटल बेस कैंप सुरक्षित पहुंचते हैं, उनका यही मानना है कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। और व्यवस्थाओं के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो व्यवस्थाओं को लेकर यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: श्रोतो, ये थे रहीम रिजवान गांधरबल से अपडेट्स दे रहे थे। मौसम खुशगवार है। महकमे मौसम याद से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश कि आप जो है एहतियात से काम लें। आप अपने साथ जो है गर्म मलबूसात, ऊनी कपड़े, विंडशीटर, अम्ब्रेला, वाटरप्रूफ बैग्स, और कोशिश करें कि जब भी आप दोनों मार्गों पर जाए यात्रा जो है आप लेसेस वाले शूज़ लगा कर ही जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको बहुत चढ़ाई चढ़नी होती है। और कोशिश करें कि उस रास्ते में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है कब वर्षा होगी इसकी जो है सूचना नहीं रहती है। पहले ही आप कोशिश करें कि आप जो है तैयार रहे, इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे। जो भी आपके लिए एडवाइजरीज आती हैं उनका आप पालन करते रहे, ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं को बताते चले, कल 7 बजे तक जो है पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त करने में, शिव जी के दर्शन प्राप्त करने में जो 20,648 श्रद्धालुओं ने जो है कल ये दर्शन मुकम्मल किए, इनमें से 18,770 पुरुष, 5,063 महिलाएं, 364 बालक, 145 साधु, 54 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 251 श्रद्धालु जो है शामिल थे। कुल मिलाकर 24,648 श्रद्धालुओं ने जो है शिव जी के दर्शन कल प्राप्त किए थे। और आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो है कुल 5,794 श्रद्धालुओं को वादी की ओर रवाना किया गया। ये जत्था श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पांचवा जत्था है जो इस वक्त नेशनल हाईवे पर रवा दवा है। ये कॉन्वॉय 267 छोटे बड़े वाहनों में चढ़ रही है। इनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 3,490 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं 2,304 श्रद्धालु बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। आपको बताते चले, आज जो यात्रा का पांचवा जत्था वादी की ओर रवाना किया गया, कुल मिलाकर 12 बजे तक जो है ये जत्था काजीगुंड पहुंच जाता है। लांबर ग्राउंड में इस जत्थे का विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप की ओर रवाना किया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को नुनवन बेस कैंप की ओर रवाना किया जाता है। कुल मिलाकर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में रवा दवा है। दोनों मार्गों पर आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम खुशगवार ही रहेगा। वहीं जम्मू में भी इस वक्त मौसम खुशगवार है। NH 44 की बात करें तो नेशनल हाईवे पर भी मौसम खुशगवार है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम आप सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोताओं से यही गुजारिश कि आप जो है एहतियाती तदाबीर से काम लें। ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का ख्याल नहीं रहता है, इस बात का पता नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऊपरी क्षेत्र में आप कोशिश करें कि आप पहले ही जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखें, चाहे वाटरप्रूफ बैग्स की बात हो, अम्ब्रेला हो, विंडशीटर्स की बात हो, वो आप अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आप जो है दोनों मार्गों पर यात्रा आपकी जो है सुखद तरीके से मुकम्मल हो पाए। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, 8 बजने वाले हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
1: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
5: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
6: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
8: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई।

0: रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस।

0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकत दारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकत दारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब प्राबोवो सुबियांतो और वजीर आजम ने मोदी जामे दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम ने मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली, मैदान, सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हज़ारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादर वतन से अपने रबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोज़ा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफीन उमूर, खुराक और तकसीम अम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक्वामी तंजीमें, सारफीन, तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारफीन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफीन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुजाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोज़ा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा।

0: कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अलाक्वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ ना कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलाक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई तजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मसनूई ज़हानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई

0: केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज पांचवा जत्था वादी की ओर रवाना किया गया। आपको बताते चले, सुबह 8 बजे तक जो है धुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट को जो है 12,800 श्रद्धालुओं ने पार किया है। इनमें से 10,249 पुरुष, 2,140 महिलाएं, 59 बालक, 42 साधु 22 साध्वी, 288 सुरक्षा कर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 12,800 श्रद्धालु ने जो है धुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया है। यूं जो है वो श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे तक जो है 1,851 श्रद्धालु ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वो वापस भी आ रही है, वापसी का सफर तय कर रहे हैं, और नए श्रद्धालु जो है जो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से प्रातः वादी की ओर रवाना किए गए, वो कारवां भी इस वक्त घाटी की ओर रवा दवा है। ताहम कई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है नेशनल हाईवे पर हल्की वर्षा भी हो रही है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है पहलगाम और गांदरबल में भी हल्की हल्की वर्षा हो रही है। ताहम मौसम में बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, अलबत्ता ऊपरी क्षेत्र में जो है आज हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 ऐसे तरीके से जारी है। श्रोता, आपको बताते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पवित्र गुफा तक के सफर में जो है आपको प्रकृति की सुंदरता, शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते जो है आपका मन प्रसन्न रहता है। आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा, तनाव से आपको मुक्ति मिलती है। आप में सकारात्मकता आती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण तीर्थ यात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाता है। श्रोताओं, ये यात्रा हमें केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती, बल्कि प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य बनता है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें और कोशिश करें कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का जो है आप पालन करते रहे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार प्रशासन द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी तीर्थ यात्री जो है पहले ही कोशिश करें अपना ऑनलाइन पंजीकरण करने की। बगैर पंजीकरण के आप यात्रा की ओर ना आए, वादी की ओर ना आए, क्योंकि आपको जो है इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आपको लखनपुर में ही रोका जाता है अगर आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोशिश करें कि जब भी आप यात्रा का मन बनाएं, एडवांस में ही पंजीकरण करें, उसके बाद अपना RFID कार्ड हासिल करें,

पंजीकरण के बाद ही आप वादी की ओर रवाना हो, घाटी की ओर रवाना हो, जम्मू की ओर रवाना हो, यात्रा बनाने का अगर आपने मन बनाया है, यात्रा करने का अगर आपने मन बनाया है, तो कोशिश करें कि आप अपने ही स्टेट में जो है आप ऑनलाइन पंजीकरण करें, और प्रॉपर पंजीकरण के बाद ही आप यात्रा के लिए निकलिए। आकाशवाणी शरण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 से मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद तस्कीन, आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाईवे पर अगर बात करेंगे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है। अगरचे देर रात से और आज सुबह से हल्के हल्के बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत खुशगवार

0: हो गए हैं पूरे इस रामा डिस्ट्रिक्ट में। जो गर्मी थी, हुबस्ता तो ह्यूमिडिटी थी, तो उससे थोड़ा सा आज सुबह से ही जो यात्री आ रहे हैं, जो आम लोग भी हैं, तो उन्हें बहुत राहत मिली हुई है। आज जो जैसा कि मालूम है कि 5,794 यात्री 267 गाड़ियों में दोनों काफलों के जो बालतल और पहलगाम से जा रहे हैं पवित्र गुफा की तरफ, तो वो इस वक्त जो बालतल का काफला है ये बानहाल पहुंच चुका है, जबकि जो पहलगाम वाला रास्ता, ये जो यात्रा का काफला है, तो उसे इस वक्त तो वो चंद्रकूट पहुंच चुके, जहां पर ये दोनों जगहों पर इनका जो ये ब्रेकफास्ट वगैरह का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। इंतजाम ने इस साल पहली बार ये किया है कि जो पहले तो दोनों यात्राओं को, पहलगाम और बालतल वाली दोनों को, चंद्रकूट में भी रोका जाता था और बानहाल में भी रोका जाता था, और इनके आपस में तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्फा होता है, फासला होता है। तो इस बार इन्होंने फैसला किया कि जो बालतल की यात्रा है वो सिर्फ बानहाल में रुकेगी, और जो पहलगाम जाने वाले यात्री होते पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ, तो उन्हें रामबन में रोका जाता है। तो दोनों ग्रुप से सुगत बानहाल में, बालतल वाले बानहाल पहुंच गए और पहलगाम वाले इस वक्त चंद्रकूट रामबन में हैं, और इस वक्त उनका नाश्ता वगैरह चल रहा है। तो उसके बाद उन्हें यहां से कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। कश्मीर की इंतजामिया के हवाला किया जाता है, जो यहां पर जो सिक्योरिटी का सेटअप बनाया गया है जम्मू डिवीजन में, तो वो बानहाल तक होता है। तो यहाँ से फिर उनको कश्मीर का, जो कश्मीर डिवीजन का सिक्योरिटी कवर होता है, तो वो उनको एस्कॉर्ट करके पहलगाम और बालतल के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इस दौरान जो कल, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 बजे के बाद किसी भी श्री अमरनाथ यात्रा गाड़ी को बानहाल से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होती, और 2 बजे के बाद चंद्रकूट के यात्रा निवास, जो यात्रा निवास वहां पर लगर्स वगैरह है, यात्रा निवास कैंप है, वहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती है किसी भी टूरिस्ट गाड़ी को, किसी भी यात्रा गाड़ी को 2 बजे के बाद चंद्रकूट से कश्मीर की तरफ, और 3 बजे बाद बानहाल से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी वजह से जो कल 3 बजे के बाद ट्रैफिक रोका गया था चंद्रकूट में, तो उसमें करीबन 2000 से जायद जो यात्री थे, पैसेंजर थे, अनरजिस्टर्ड यात्री थे, उन्हें वहां रोका गया। तो इसी तरह करीबन ये 1.5 से 2 हजार के दरमियान जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे या टूरिस्ट थे, तो उन्हें बानहाल में रोका गया था। तो उन्हें आज सुबह ही यहां से जो सिक्योरिटी बंदोबस्त होता है उसके साथ रवाना किया गया है। इस दौरान जो SDRF है, उन्होंने हाईवे पर कई मुकाम पर 10 के करीब फर्स्ट एड कायम किए हैं, और इनकी जो टीमें हैं उनको तैयार बतैयार रहने का हुक्म दिया गया है, ताकि किसी भी अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है किसी भी वजह से, तो उसके लिए इनको तैयार बतैयार रखा गया है। और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बहुत तालमेल के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो सिक्योरिटी का इंतजाम है, जो बाकी खाने पीने के इंतजाम है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, और बगैर किसी दुश्वारी के जो यात्रा आगे बढ़ रही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए। श्रोता, ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट्स दे रहे थे। जैसा कि हम सुन रहे थे कि हल्की वर्षा जो है इस वक्त हो रही है रामबन के सेक्टर में, और वक्फे से जो वर्षा है हो रही है, और आज महकमे मौसमियात से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार, जो है मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार, आज दोनों मार्गों पर जो है हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम जो है फिलहाल खुशगवार है, कोई बड़ी चेंज इसमें नहीं आने वाली है। ताहम आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश कि आप जो है एहतियाती तदाबीर से काम ले, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे, क्योंकि प्रशासन की यही मुसलसल कोशिश है कि आपकी ये जो यात्रा है, पूरी यात्रा जो आपकी है भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक के सफ़र में, जो है आपको किसी भी अड़चन का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है आप पहले ही करें, पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करें, ताकि आपको जो है बीच रास्ते में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कोशिश ना करें कि आप यात्रा करने की आप ठान लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी। रहेगी। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि जो विज़िटर्स यहाँ पर ऑलरेडी है, जो

सैया यहाँ पर रुके हुए है, वो जो है यात्रा रूट्स की ओर प्रवेश करते हैं ताकि वो भी यात्रा करें, लेकिन उनके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहती है, प्रॉपर दस्तावेज़ात नहीं रहते हैं। अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वही पुलिस की ओर से भी उन्हें ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो है अपना होटल बुकिंग रसीद जो है वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स पर जो है आपको रोका जाता है, वहाँ आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप होटल का जो बुकिंग रसीद है वो अपने साथ रखें, टिकट जो है आपकी वो भी अपने साथ रखें, ताकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स पर अगर आपको रोका भी जाए आपको आसानी से छोड़ा जाए, लेकिन आप ये कोशिश ना करें कि आप यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, दोनों का प्रोसेस जो है अभी फ़िलहाल के लिए रोका गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो है यात्रा नंबर जो है वो बना रहना चाहिए। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ये इकदाम उठाए गए हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि पूरी ये जो यात्रा है इसमें वो जो है आपको तरीक़ेकार से प्रॉपर तरीके से जो ये यात्रा है अपने रास्ते की ओर मुकम्मल हो। दोनों मार्गों पर जो है आपको प्रशासन के बहुत सारे हेल्पलाइन डेस्क मिलेंगे, अगर आपको कोई दुविधा का सामना हो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, या आपको जो है तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत हो, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर आपको तिब्बी सहूलियात मैसर हैं, आपके खान पान का बंदोबस्त किया गया है, आपको जो है हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन नंबर्स को लेकर जो है आप उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की जो है मुश्किल का सामना करना पड़े। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग, आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस वर्ष की यात्रा में सरकार द्वारा उठाए गए इकदामों से जो है सभी शिव भक्त बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार

0: तीर्थयात्री। स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदामों से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक तासुरात सुनते हैं।
1: सेवा मंडल जगराओं पंजाब की तरफ से हमारा अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए यहाँ पर 17वां लंगर हम हर साल की तरह यहाँ पर लगाते हैं। सभी अमरनाथ यात्रियों की यात्रा की सुविधा के लिए यहाँ पर 24 घंटे जो लंगर है वह यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा यात्रियों के यहाँ पर नहीं आने देते। सरकार की तरफ से भी वो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जैसे पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। यह सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से यहाँ पर हमें लंगर वालों को उपलब्ध है। हम सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, जम्मू कश्मीर सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: मैं श्याम कुमार पंजाब से, श्री गौरी शंकर सेवा मंडल जगराओं वालों का जो लंगर लगा हुआ बहुत बढ़िया, सारा सरकार का बहुत बढ़िया इंतजाम है। सही थे सारा पानी की व्यवस्था बहुत ठीक है, सब बहुत शानदार इंतजाम किया है सरकार ने भी। असी 24 घंटे लंगर उपलब्ध रहता, जो भी कान भी आती है उन सारे इतने असी बड़े प्रेम दे नाल, साड़ी सारी पार्टी प्रेम दे नाल सारे लंगर छका दे रहे। बहुत ज़्यादा इंतजाम है जी, पैर पैर से सारी सिक्योरिटी लगी है, बहुत उन्हों की देख रेख में होंगे गा। तो इस तरह बहुत ही आनंददायक है जी सारू। मैं कहना इतने लंगर आ के सारे यात्रा करनी चाहिए आ, तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सब ते बनी रहे। जकारा
3: कामन से हूँ, कामन ब्रजभूमि में आता है मथुरा वृंदावन, वैसे जिला हमारा भरतपुर डीग लगता है। यहाँ हम सेवा करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ जो दोनों सरकारों की व्यवस्था है, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार इसके जम्मू कश्मीर सरकार की, बेहतरीन व्यवस्था है। मैं ये आने वाले साथियों के लिए, यात्रा पर आने वाले साथियों के लिए सलाह देता हूँ, राय देता हूँ अपनी, और सजेस्ट भी करता हूँ कि सारे लोग निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के यात्रा करें। कश्मीर वासियों की मेहमानबाजी, मेहमान नवाजी एवं सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, चाक चौबंद है, बड़ा आनंद आ रहा है। राजस्थान इधर इधर मौसम भी बहुत सुहावना बना हुआ है, कहीं कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है, बहुत अच्छी राजी खुशी आनंद पूर्वक यात्रा करें।
4: मेरा नाम बीना सोनी, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम यात्रियों की वेट में है कि कब यात्री आए, हम उनकी सेवा में हाजिर खड़े हो जाएं जी। और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सेवा ही सबसे ऊपर है।
5: मेरा नाम लता खंडेलवाल है, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, हमें यहाँ करके अच्छा लगता है। हमारी एक ही मकसद है कि जो भी यात्री आते हैं उनकी सेवा करना और उनको अच्छे से किसी बात का कष्ट ना हो। यहाँ पे कोई सबसे बात की सुविधाएं है, नहाने की, बाथरूम वगैरह की या खाने पीने की किसी व्यवस्था की कमी नहीं है। और हमें यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हर साल आते हैं सेवा करने के लिए, सेवा भाव से ही आते हैं।
6: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
7: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
7: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
6: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, 9:25 होने को है, कुछ ही पलों में समाचार सुनते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो इंडोनेशिया के सदर के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वजराए अजम के साथ बाहिमी मफादात और दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वो जकार्ता में इंडियन डायस्पोरा से भी खिताब करेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और सोनमर्ग दोनों रास्तों से अहसन तरीके पर जारी है। यात्रा के तीसरे दिन कल रिकॉर्ड तादाद में 24,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासना आज सुबह 8 बजे तक 3,437 श्रद्धालुओं ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल नुनवन और चंदनवाड़ी का दौरा करके यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जमीनी सतह पर जायजा लिया। उन्होंने कई यात्रियों से बात करके उनके तजुर्बात के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा,
1: चार यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कश्मीर प्रशासन ने, साइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से

0: अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है।
1: जम्मू कश्मीर के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोबे के कमिश्नर की हिदायत पर फूड सेफ्टी की एक टीम ने पहलगाम और नुनवन का दौरा करके वहां यात्रियों के लिए लगाए गए लंगरों में खाने पीने की अशिया के मयार का जायजा लिया। टीम के मेंबरान ने खाने पकाने के दौरान पाकिजगी को यकीनी बनाने के लिए खाना तैयार करने वाले अफराद में कई अशिया तकसीम किए। उधर बांडीपुरा की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिप ने कल जिला के शादीपुरा इलाके में यात्रियों के लिए मखसूस ट्रांजिट कैंप का दौरा करके वहां दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। यात्रियों को मुहैया रखी जाने वाली खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मौसूफा ने यात्री के एहसन इनेकाद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने की हिदायत दी। इस दौरान यात्रियों का एक और काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा भी पहलगाम और सोनमर्ग के रास्तों से गुफा तक पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। यात्रियों ने इंतजामिया और मुकामी लोगों की जानिब से उनके लिए किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया है।
2: हम महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो सेवे करी है वो बहुत अच्छे लगे। बड़े प्यार से हमसे आए और हम 6 यात्री हैं और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर।
3: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटागढ़ दिल्ली साथ। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
1: वादी के अवल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूल आज से 14 दिन की गर्माई छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मजकूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। खुराक व उमूर सारफीन के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू सूबे के कठुआ जिले में 24वीं सालाना विशाल भंडारे का इफ्तिताह किया जिसका एहतमाम मोगा पंजाब के बाशिंदों ने किया है। इस भंडारे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि सेवा का जज्बा भारत के समाज का एक अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन आज से जम्मू के दो रोजा दौरे पर रहेंगे। पार्टी की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि नितिन नबीन तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा दीगर कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। आज कोऑपरेशन की मरकजी वजारत का 5वां योम तासीस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि के मौजू पर एक तकरीब मुनक्कद हो रही है। तकरीब के दौरान मरकजी वजीर कई प्रोजेक्टों का सनी की बुनियाद रखने के अलावा दीगर कई प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तेवार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 से 12 तक फोन नंबर 01942452019 पर हो रही है। आगाफर पर दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
4: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
5: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
6: जय जय बाबा बर्फानी।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइको श्रीनगर ट्रांजिट कैब से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े ही खुश अश्लूबी के साथ जारी है, पीसफुल तरीके से जारी है। वहीं श्रीनगर की बात करें तो कल शाम को ही यहाँ पांथा चौक ट्रांजिट कैब में कई सारे अमरनाथ जी यात्री जो है वो पहुंचे, जिनमें मर्द, खवातीन और साधु साध्वी भी शामिल थे, कुछ बच्चे भी उनमें शामिल थे। और आज भी अमरनाथ जी यात्रियों को यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए दोनों रास्तों की तरफ रवाना किया गया, जिसमें सख्तरीन सिक्योरिटी के बीच में उन्हें कॉन्वॉय के साथ रवाना किया गया। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के ट्रांजिट कैब में आज भी एक बड़ी तादाद यात्रियों की मौजूद है, जो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मुसलसल आज भी यात्रियों को यहां से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और इस दौरान कल कई सारे ऑफिशियल्स ने यहाँ पवित्र यहाँ ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के साथ मुलाकात की है और उनकी खैर आफियत पूछी है और उनसे इंटरेक्शन करके यात्रा को लेके जो सुविधाएं उनके लिए रखी गई है उस बारे में उन्होंने फीडबैक हासिल किया है। तो कुल मिला के अमरनाथ जी यात्रा को लेके श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में, जैसे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं यात्रियों के लिए रखी गई है। हर तरह की जो फैसिलिटीज है, पीने के पानी से लेके लंगर्स और यहाँ पर किचन भी कायम किए गए, और इवन की फूड मसाले की जो टीम है वो यहाँ इन कम्युनिटी किचन में जाके देख रहे हैं कि फूड क्वालिटी को चेक किया जा रहा है, लंगर्स को जो है वो उसको देखा जा रहा है कि किस तरीके का जो है यहाँ पे जो क्वालिटी है वो रखी गई।

0: है. सो ओवरऑल सैनिटेशन हो, पीने का पानी हो, या फिर यहाँ पर चूंकि गर्मी भी है तो उस हवाले से यहाँ पे फैंस वगैरह भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि अमरनाथ जी यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं रखी जाए. और आज मौसम बिल्कुल साजगार है, हालांकि अभी शहर में थोड़े बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन मौसम के हिसाब से आज भी सुहाना मौसम है. और इसीलिए आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ वही उत्सव और वही जोश है जो पहले दिन से हमें श्रीनगर में इस ट्रांजिट कैब के अंदर दिखाई दे रहा था.
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए. श्रोता, ये थे इमरान नाई को पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से अपडेट्स दे रहे थे. जैसा कि बता रहे थे कि यात्रा को लेकर जो है सरकार इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि यात्रियों को किसी भी दुविधा का सामना ना करना पड़े. इस वर्ष की यात्रा में जो है विशेष उत्साह से जो ये यात्रा है इस वक्त जारी है. इस ट्रांजिट कैंप में भी बहुत सारे यात्री जो है रात को रुकते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जो है व्यापक प्रबंध किए गए हैं. प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयं सेवा संगठन और स्थानीय नागरिक मिलकर जो है इस वक्त यात्रा 2026 के तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं. कोशिश यही है कि जो मुख्य भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है किसी भी यात्री को मुश्किल का सामना ना करना पड़े. आकाशवाणी की भी यही कोशिश है कि क्षण क्षण हम आपके साथ बने रहे, आप तक क्षण क्षण की सूचनाएं पहुंचाते रहे ताकि आपको जो है इससे आसानी हो पाए. फिलहाल एक और भजन आप सब की नज़र.

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा करें। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुने, हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akashvani@gmail.com। श्रोता, आपको बताते चले, ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार जो है 5774 शिव भक्तों ने जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 4170 पुरुष, 1368 महिलाएं, 84 बालक, 56 साधु, 8 साध्वी, 2 ट्रांसजेंडर, 86 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 5774 श्रद्धालु ने जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको याद दिलाते चले, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज पांचवा जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। ये जत्था पहलगाम और बालटल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा। 267 छोटे बड़े वाहनों में कुल 5794 श्रद्धालु घाटी की ओर रवा दवा है। कुछ एक घंटों में जो है काजीगुंड पहुंचने वाले हैं। आपको याद दिलाते चले, इस जत्थे का जो है विभाजन लांबर ग्राउंड में होता है। लांबर ग्राउंड में एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैब पांथा चौक की ओर रवाना किया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को जो है जिन्हें पहलगाम के प्राचीन मार्ग से दर्शन करने जाना होता है, उन्हें नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंचाया जाता है। आज जो यात्रा का पांचवा जत्था वादी की ओर रवाना किया गया, ये जत्था जो है इनमें से 3887 श्रद्धालु पुरुष है, 1211 महिलाएं, 20 बालक, 599 साधु, 76 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। बालटल के मार्ग से 2304 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 3490 श्रद्धालु शिवजी के दर्शन प्राप्त करने जाएंगे। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 1446 पे कॉल करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग से अगर आप पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं तो आप हमें FM बालटल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज जो है पांचवा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से प्रातः सुबह घाटी की ओर रवाना किया गया, जो कुछ घंटों में काजीगुंड पहुंचने वाला है। लांबर ग्राउंड में इस जत्थे का जो है विभाजन होता है। एक कॉन्वॉय को जो है पहलगाम के नुनवन बेस कैंप लिया जाता है, वही बालटल के मार्ग से दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैब पहुंचाया जाता है। वहां से होते हुए जो है उन्हें गांदरबल की ओर रवाना किया जाता है। पहलगाम के मार्ग से जब आप आते हैं तो पहलगाम से आप जो है चंदनवाड़ी, पिसू टॉप, नागाकोटी, शेषनाग, महागुन स्टॉप, पंचतरनी और उसके बाद जो है आप संगम पहुंच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों मार्गों से आ रहे सभी तीर्थयात्री एक साथ मिल जाते हैं। बालटल के रास्ते से अगर आप पवित्र गुफा की ओर जाते हैं तो आप नीलगढ़, बालटल, धुमेल और दारीमार्ग से होते हुए संगम पहुंच जाते हैं। संगम से जो है पवित्र गुफा तक का सफ़र 3 किलोमीटर्स का है। ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको थोड़ा एहतियात से काम लेना होता है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको पैदल चलना होता है। मौसम भी कौन सा रुख इख्तियार करेगा वो भी पता नहीं रहता, तो कोशिश करें कि आप नीचे ही, अगर आपको जो है लगता है कि आप ऊपर जाने के काबिल ना है तो आप डेजिग्नेटेड मेडिकल काउंटर्स पर जाए, वहाँ डॉक्टर से मशवरा करें, वहाँ चेकअप करवा लें, उसके बाद ही आप जो है आगे का सफ़र तय करें। क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में अगर आपको दिक्कत होती है तो उससे जो है आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। कोशिश करें कि नीचे ही आप मेडिकल काउंटर्स पर जाए, वहाँ अपना चेकअप कराए, उसके बाद ही पवित्र गुफा की ओर रवाना हो। श्रोता, आपको बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है कुल मिलाकर आज 9,237 श्रद्धालु

ने पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 6420 पुरुष, 2500 महिलाएं, 117 बालक, 71 साधु, 12 साध्वी, 3 ट्रांसजेंडर, 111 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। कुल मिलाकर 9237 श्रद्धालु ने जो है, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आकाशवाणी संस्करण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल

श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM बालटल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन

0: एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको बता चुके हैं, महकमे मौसमियात से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं NH-44 की अगर बात करें तो सुबह से जो है वक्फे से हल्की वर्षा हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम विभाग के ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दिन भर मौसम अबरालूद ही रह सकता है, हल्की हल्की वर्षा भी हो सकती है। ताहम किसी बड़ी मौसमी तब्दीली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश करेंगे कि आप जो है एहतियाती तदाबीर से काम लें, पहले ही उन चीज़ों का एहतियाम करें जिन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है कब वर्षा होगी, कितनी वर्षा होगी, कब मौसम करवट बदलेगा, इसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता है। पहले से ही आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि ऊपरी क्षेत्र में वर्षा हो सकती है। विंड शीटर्स, अम्ब्रेला, ऊनी मोज़े, गर्म मलबूसात, लेसेस वाले शूज़ का इस्तेमाल और वाटरप्रूफ बैग्स जो है वो भी आप अपने साथ रखें। उसमें जो है अपने खान पान की चीज़ें जो है रख सकते हैं ताकि वर्षा के दौरान जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों में जब आप चलते हैं, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ जब आप देखते हैं, यकीनन जो है सभी तीर्थ यात्रियों को ये नज़ारा एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाता है। ये यात्रा हमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती बल्कि प्रकृति की संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वास्तुओं का जो है उपयोग आप ना करें, इन चीज़ों का आप उपयोग ना करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है पहले ही नो प्लास्टिक जोन करार दिया गया है। ग्रीन यात्रा का जो नारा है वो इस वर्ष की थीम भी है, और कोशिश करें कि जहां पर भी आप सरकारी अधिकारियों को देखें उनके साथ कॉपरेट करते रहे। पूरे मार्गों पर जो है दोनों मार्गों पर आपको जगह जगह पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलेंगे, बहुत सारे काउंटर्स मिलेंगे, हेल्पलाइन डेस्क मिलेंगे, वहाँ पर जो है आप उनसे कॉपरेट करें। सुरक्षा के जो बंदोबस्त है, सुरक्षा कर्मचारी जो है उनके साथ जो है आप कॉपरेट करते रहे पूरी यात्रा के दौरान, और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है सुखद तरीके से हो पाए, आपकी ये पूरी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। आकाशवाणी की यही मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें।

0: और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज पाँचवा जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ वक्त में ये काफिला जो है काजीगुंड पहुंचने वाला है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े खुश असलूबी के साथ जो है जारी है। श्रोता, ये यात्रा जो है राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसे विविधता में एकता की भारतीय भावना और अधिक सुदृढ़ होती है। अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण

मोक्ष सेवा भव भी है। यात्रा मार्गों पर अनेक संस्थाएं और स्वयंसेवक लंगर, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। निश्वर सेवा की ये परंपरा भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाती है। श्रोताओ, भगवान शिव को संधर और सज्जन दोनों का देवता माना जाता है। उनका संदेश है कि जीवन में सत्य, धैर्य, करुणा और आत्मसम्मान का अपनाया जाए। अमरनाथ यात्रा हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देता है। हम सभी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों को जो है उनकी जो यात्रा है सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। प्रसारण के तहत अगर आपकी कोई राय, विचार या कोई प्रश्न हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर आप नोट करें, हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954 पर जो है आप अपने विचार, अनुभव या कोई भी सवाल जो है, कोई भी राय रखते हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालतल के मार्ग पर आप हमें एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज पांचवा जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया। कुछ ही पलों में ये कॉन्वॉय जो है काजीगुंड पहुंचने वाली है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुश असलूबी के साथ इस वक्त जो है दोनों मार्गों पर जारी है। ताहम ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर वक्फे वक्फे से हल्की वर्षा भी हो रही है। अभी तो कुल मिलाकर जो है आज दिन भर पवित्र गुफा में 12,479 शिव भक्तों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 8,516 पुरुष, 3,588 महिलाएं, 137 बालक, 82 साधु, 19 साध्वी, 3 ट्रांसजेंडर, 134 सुरक्षाकर्मी शामिल है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिन भर 12,479 श्रद्धालुओं ने जो है शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं और वो वापस इस वक्त दोनों मार्गों पर रिटर्न कॉन्वॉय में आ रहे हैं। वही आज प्रातः भगवत नगर बेस कैंप से जो है यात्रा का आज पांचवा जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया। ये कॉन्वॉय 267 छोटे बड़े वाहनों में रवा दवा है, जिनमें कुल मिलाकर 5,794 श्रद्धालु जो है आज घाटी पहुंच जाएंगे। काजीकुंड लांबर ग्राउंड से जो है इस जत्थे का जो है विभाजन होगा। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कम पांथा चौक लाया जाएगा, वहीं दूसरे हिस्से को जो है पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंचाया जाएगा, जिन्हें बाद में पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस यात्रा से जुड़े सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, ताकि ये पूरी यात्रा जो है सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, दिन के 12 बजने वाले हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास

0: पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva in Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. India will host the 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning today in Kochi in Kerala. Ministry of Women and Child Development said senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Election Commission has announced the schedule of by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. The by-elections will be conducted for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur constituency in Gujarat and Datia constituency.

0: constituency in Madhya Pradesh. As per the notification, nominations will be accepted until the 13th of July and scrutiny will be held on the 14th of July. The polling for these seats is scheduled to be held on the 30th of July. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team, SIT, probing the counting of donations received by the trust. According to an official notice issued on June the 28th, 2026, the agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. In Delhi, IMD has forecast cloudy sky with moderate rainfall for the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In the Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovic Fokina in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
2: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है जम्मू से बटूट का जो रास्ता है, इस रास्ते पर जो है आसमान अबर आलूद ही रहेगा, बादल छाए रहेंगे, वही गरज चमक के साथ वर्षा भी हो सकती है। बटोट से अनंतनाग के रास्ते पर जो है गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस पूरे रास्ते पर जो है आसमान अबर आलूद ही रहेगा। अनंतनाग से पहलगाम का जो रास्ता है वो भी, इस रास्ते में भी आपको जो है वक्फे से वर्षा देखने को मिलेगी। तो सभी श्रोताओं से यही निवेदन कि आप जो है अपने साथ मलबूसात का अहतमाम करें, गर्म मलबूसात अपने साथ रखें, वाटरप्रूफ बैग्स, अम्ब्रेला और विंडचीटर्स का भी आप इस्तेमाल करें। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक के सफ़र में जो है आपको वक्फे से बारिशें देखने को मिलेगी, वही इस पूरे मार्ग पर जो है पवित्र गुफा तक जो है आपको आज दिन भर वक्फे से गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिलेगी। वही बटोट का जो रास्ता है वो भी आज इसी तरह रहेगा। नेशनल हाईवे पर भी जो है आपको वक्फे से बारिशें देखने को मिलेगी। बालतल की अगर बात करें तो बालतल के रास्ते से जो है मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार आसमान अबर आलूद ही रहेगा, वही हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश कि आप जो है अपने साथ इन चीज़ों का एहतमाम करें, पहले ही अपने आप को तैयार रखें। ऊपरी क्षेत्र में जब आप जाते हैं, चाहे आप बालतल के रास्ते से जा रहे हो या पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आप जा रहे हो, ऊपरी क्षेत्र में वर्षा होने को है और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है

अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, अपने साथ अम्ब्रेला रखें, विंड चीटर्स का इस्तेमाल करें, गर्म मलबूसात रखें, वाटरप्रूफ बैग्स का आप इस्तेमाल करें ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुँचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
1: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 1446 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM बालटल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको याद दिला दे चले, आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा का पांचवा जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया। इनमें से जो है 3,887 श्रद्धालु पहलगाम के प्राचीन मार्ग से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वहीं बालटल के मार्ग से कुल मिलाकर 2,304 श्रद्धालु जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे। ये कॉन्वॉय जो है कुछ ही पलों में काजीगुंड पहुंचने वाली है। सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने में बड़ी खुश असलूबी के साथ इस वक्त इस कारवां में जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 267 छोटे बड़े वाहनों में यह कॉन्वॉय जारी है। इनमें से जो है बालटल के मार्ग से 2,304 श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 3,490 श्रद्धालु जो है पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 5,794 श्रद्धालु जो है आज घाटी की

रवाना किए गए, जो बाद में पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। बालतल के मार्ग से 2304 श्रद्धालु और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 3490 श्रद्धालु जो है पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम अबर आलूद ही रहेगा। वहीं गरज चमक के साथ जो है वक्फे वक्फे से वर्षा भी होने की संभावना जताई गई है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: आदाब श्रोताओं, हम आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से बोल रहे हैं। FM वालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसाद भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हाँ आपकी सेवा में रहते हैं। मैं हूँ शाहिना ऋषि, आपकी सेवा में हाजिर। अभी से लेकर 6 बजे तक आप मेरे साथ ये विशेष प्रसारण समाप्त करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ सायका जुड़ेगी और कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी सेवा में रहेंगे, क्योंकि वो इस आज जो इस साल का 2026 का ट्रांसमिशन है, बहुत सारे साथियों को हमने इस प्रसारण में इंक्लूड किया है, तो बारी बारी वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, आपकी सेवा में

उपस्थित हो जाएंगे तो इस विशेष प्रसारण से हम यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और आपकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हैं। अमरनाथ यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे, ये 12 बजे का अपडेट है।

तो श्रोताओं आपको बता दे, दोपहर 12 बजे तक 15,132 हमारे तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या रही है 10,400, क्षमा कीजिएगा, पुरुषों की संख्या रही है 10,400, महिलाएं 4,292, बालक 152, साधु 100, साध्वी 23, ट्रांसजेंडर 3 और सुरक्षा कर्मचारी 162। तो कुल मिलाकर संख्या जो बनती है, जिन यात्रियों ने भोले बाबा के दर्शन प्राप्त किए हैं आज दोपहर 12 बजे तक, 15,132। श्रण के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर और DTH के आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित हैं। साथ ही साथ आप हमें DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।
2: जी पजमान, हम भी श्रोताओं को एक जो है अपडेट

0: पीस आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और डीटीएच के आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित हैं। साथ ही साथ आप हमें डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।
1: जी पजमान, हम भी श्रोताओं को एक जो है अपडेट

आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी महासागर नजरिए नीज आजाद और खुले भारत बहुलकाहिल खित्ते के तई मुल्क के नुक्ता नजर को मजीद तकवियत मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वजीर आजम के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी रबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबिले तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आईन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के पुरज़्म मैमार थे, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है, जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है, ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का इहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जिमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरिब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर

0: में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय

0: स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है,

0: उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर

प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने

0: कर रहा है। सरकार ने कहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बोतल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। और साथ ही साथ आप हमें डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं।
3: कह सकते हैं कि उन्होंने

0: है यात्रा के हवाले से, यात्रियों के हवाले से। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जावेद मेहराब साहब, जम्मू के भगवती नगर से। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके पास। जी जावेद।
1: जी, पवित्र अमरनाथ यात्रा की नई अपडेट्स के साथ मैं जम्मू से जावेद मेहराब। पवित्र अमरनाथ यात्रा का पर्व जम्मू शहर में अपने चरम पर है, जहां देश भर से तीर्थयात्री यहां लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं वाहनों के माध्यम से यहां पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को प्रवेश द्वार लखनपुर, कठुआ और सांबा के पास ही शिविरों में रोका जा रहा है।

गया है ताकि किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न हो। रविवार देर शाम यहाँ डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने लखनपुर, कठुआ और सांबा के मुख्तलिफ शिविरों का दौरा किया, वहाँ लोगों से मुलाकात की और विभिन्न तीर्थयात्रियों के सवालों के जवाब भी दिए। मुख्य तौर पर तीर्थयात्रियों के जो सवाल थे वो तीर्थयात्रा के शुरू होने और जल्द से जल्द उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर ही पूछे गए, लेकिन

हर तरह की, जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज है बल्कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, आरटीबी, आईटीबीपी, ट्रैफिक पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लोग या उनके एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। सीसीटीवी कैमराज के जरिए से पूरी इस ट्रांजिट कैंप को मॉनिटर किया जा रहा है और कुल मिला के यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उस हवाले से भी यहाँ पे

0: तरह की कोई अभी तक यात्रियों की कहीं पे भी आपको शिकायत नजर नहीं आएगी और न ही इस कैब से अभी कोई उस तरीके की कोई शिकायत मिली है।
1: बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। हमारी जो प्रशासन है हर तरह से यही कोशिश कर रही है कि हमारे यात्री जो है किसी किस्म का भी उनको किसी चीज का सामना ना करना पड़े जिससे उनको कोई मुश्किल दरपेश आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से इमरान नाइको।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम में हम हमारे संवाददाताओं के साथ जुड़ते हैं और यात्रा से जुड़े अपडेट्स जो है आप तक पहुँचा

0: जो मदद ली जा सके, उनके उनको काम पर लगाया जा सके। तो ऐसा ऐसी ये मतलब तैयारियां जो है बहुत बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से अभी तक जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है इंतजामिया के खिलाफ, अगर मजमू तौर कहेंगे तो।
1: जी मोहम्मद तस्कीन, आपका इस विवरण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता रामबन से, जिन्होंने बताया कि रामबन ज़िले में जो पहुंचने वाले श्री अमरनाथ जी यात्री हैं, प्रशासन द्वारा दी गई इन सुविधाओं से बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रबंध जो है बहुत ही अच्छे जो है किए गए हैं। और कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिति जो है सामान्य है और सभी रास्तों पर यात्रा जो है बिना किसी रुकावट या बाधा के जो है चल रही है।

0: एक्सटेंशन के अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं और इसी के लिए हम आपकी सेवा में प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उपस्थित रहते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे पास आए हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। तो अपडेट को आगे बढ़ाते हुए एस तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे पहलगाम से। एस तारिक, इनसे पूछते हैं क्या कुछ अपडेट है आपके पास तारिक?
1: जी बिल्कुल, पहलगाम के प्राचल रूट में मिला जुला मौसम के बीच आज दिन भर वार्षिक यात्रा परंपरागत रूप से जारी रही। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ के प्रतिमाओं की अज्ञात यात्रा सुखद तरीके से अपना सफर जारी रखे हुए हैं। आस्था और सफलता से भरे इस यात्रा में आज सुबह 4 बजे उन्होंने आधार शिवत से हजारों यात्रियों का जो जत्था चंद्रवाड़ी से फिसलन शुटा जोजबल और नागाकोटी से होते हुए शिशनाग के और महिस्ता भी पहुंच गए हैं, जिन्हें निजी होटलों में कयाम कर रहे श्रद्धालु भी शामिल है। इधर शिशनाग और पंचतरणी में रात को रुके हजारों यात्री अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं और बाबा शिव के दरबार अपना माथा टेक रहे हैं। इस बीच पैदल कैब काजीगुंड से पहलगाम प्राचल रूट से के लिए 139 छोटी बड़ी वाहनों में 3409 यात्रियों पे मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा में बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम पहुंच गया है, जिनमें 2448 पुरुष, 623 महिला, 362 साधु, 45 साध्वी और 5 बालक शामिल है। वह 1 बजे तक पहलगाम पहुंच गए और रात को वही विश्राम करके सुबह पोफटे ही वहां से निकलकर दर्शन के लिए निकलेंगे। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पे अगर हम बात करें तो आंकड़ों के अनुसार आज दिन रिपोर्ट फाइल करने तक 16,932 ने दर्शन प्राप्त किया। इस तरह 3 जुलाई से अब तक दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 72,959 पहुंच गई है और आज शाम तक दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम और इसके गिरतनावा के आसपास यात्रा ट्रैक में मिला जुला मौसम है। अलबत्त सुबह 8 बजे दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी हुई जो 1 घंटे तक जारी रही, तहम इस वक्त मतलब साफ है और मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मौसमी विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम पवित्र गुफा में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग की पेशनगोई के मुताबिक पहलगाम पवित्र गुफा में उम्मीद तौर पर मसला उबरालूद हल्की बारिश है, गन गरज और एक मुख्तसर का दौर रहेगा। प्रशासन मौसम की बदलती सूरत हाल पे नजर बनाए हुए है। यात्रियों की बेहतर हिफाजत के लिए तमाम सुविधा प्रदान कराई गई है। सुरक्षा से लेकर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। गाठी में दाखिल होते ही नवयुग टनल काजीगुंड से

0: आगम तक तीन दायरों वाली सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। आशा है कि दर्शन करके लौटे और आने वाले यात्रियों की नैवेद्य तर्पण और मनोहरित सिद्ध होगी। जी
1: जी तारिक, हमें बताइए, जो आपने कहा कि बूंदाबांदी हो गई सुबह, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यात्रा में, या यात्रियों को कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा?
0: नहीं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो इस वक्त की जो गर्मी की तमाजत है, तकरीबन तकरीबन जम्मू के आसपास ही, बिल्कुल जो जो इस वक्त जो टेम्परेचर जम्मू में है, कश्मीर में भी है, लेकिन कश्मीर में ये चीज है कि चूंकि हम यहाँ पहाड़ी सिलसिलों में बीच में रहते हैं, वहाँ तो थोड़ी सी तमाजत में हमें ये फर्क पड़ता है कि थोड़ी सी नमी होती है, और ये जो आज की बूंदाबांदी सुबह होती है 1 घंटा 2 घंटा बीच बीच में, इससे इस गर्मी को खत्म करने का एक जवाब बन जाता है और यात्रियों के लिए ये एक तरियाक सा साबित होता है। जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा, ये एंजॉय करते होंगे हमारे यात्री इस मौसम
0: बिल्कुल,
1: को।
0: ये
1: तो
0: मैं चिंता मगना हूँ।
1: तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे एस तारिक पहलगाम से, जो हमें यात्रा और यात्रीज के अपडेट्स से हमें हमारे साथ साझा कर रहे थे। हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि मौसम का क्या है, मौसम बदलता रहेगा, क्योंकि इस समय जो है, इस समय का मौसम यानी श्रावण का मौसम है, वो बदलता रहता है। कभी आपको अच्छी और खिली हुई धूप देखने को मिलेगी, और कहीं बादलों से घेरा हुआ आकाश, कहीं बाहर बूंदाबांदी और कहीं गरज चमक। सभी यात्रियों से यही हमारी निवेदन है कि ऐसे में निराश ना हो, कोई तनाव ना ले, बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते, प्रसन्नता के साथ भोले बाबा का जाप करके आगे बढ़ते रहे। हमारी यही मनोकामना है कि हर तीर्थ यात्री जो है, अपनी मंजिल तक पहुँच कर भोले बाबा का दर्शन करे, और प्रसन्नता के साथ बर्फानी बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करके सफलता के साथ अपने क्षेत्रों के और सुखद पूर्वक रवाना हो। भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और आपको बता दें कि इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बालताल से रहीम रिजवान। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ स्थिति है इस वक्त बालताल के मार्ग पर और मौसम के कैसे मिजाज हैं ये भी। जी रिजवान साहब।
1: जी मौसम बिल्कुल सुहाना ही है, बीच में बारिशें भी हो रही है तो, लेकिन इस वक्त धूप खिली हुई है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और इस सुहाने मौसम के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा आज चौथे रोज भी बालताल मार्ग से पूर्ण रूप से जारी एवं संपन्न हो रही है। बालताल मुख्य मार्ग से बाबा बर्फानी के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने केवल पंजीकरण करके बालताल पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पर अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष काफी मात्रा में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए घाटी आगमन हो रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी यात्रा मार्ग के दोनों अतराफ सुरक्षा कर्मी अलर्ट रखे गए हैं।
0: जी जी।
1: यात्रा कॉन्वॉय के दौरान किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को यात्रा कॉन्वॉय के आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि यात्री वाहनों को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। इधर बालताल के पूरे क्षेत्र में खुशगवार वातावरण देखने को मिल रहा है, मौसम सुहाना है, बीच बीच में

0: 10 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट पार किया, उनमें 13,592 पुरुष, 3,114 महिलाएं, 120 बालक बालिकाएं, 86 साधु, 46 साधियां तथा 433 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इधर सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुज़श्ता देर रात गए तक 23,231 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर हाजिरी दी, पूजा अर्चना में शिरकत करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना की। शिवलिंगम का दर्शन करके बीती रात 10 बजे तक बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 17,860 पुरुष, 4,580 महिलाएं, 320 बालक बालिकाएं, 130 साधु, 51 साधियां एवं 290 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए जगह जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जिसको लेकर यात्री संतुष्ट थे। इधर बीती शाम 5 बजे के बाद जो 911 यात्री, जिनमें 684 पुरुष, 179 महिलाएं, 48 बालक बालिका शामिल थे, ट्रांजिट कैंप मैनगाम पहुंचे। उन श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप एवं जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। इस दौरान जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से जो यात्रियों का अगला जत्था आज घाटी आगमन हुआ, उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रांजिट कैंप शादीपोरा, ट्रांजिट कैंप मणिगाम, कंगन मार्केट, गुंड कुलन एवं सोनमार्ग मार्केट पार किया तथा वह बालतल पहुंचे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, वहीं रात्रि विश्राम, शौचालय, बिजली, पानी, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाओं के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रखी गई हैं, ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस दौरान आज 3 बजे तक 5,285 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचे। बालतल पहुंचने वाले इन यात्रियों में 4,540 पुरुष, 530 महिलाएं, 35 बालक बालिका, 31 साधु, 19 साधियां और 130 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। श्रोताओं, हम भी आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा संपूर्ण तरीके से सफल हो जाए। जी
1: जी रिजवान साहब, आपका इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका
1: जी। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता रहीम रिजवान बालताल से, जिन्होंने वहाँ की स्थिति के बारे में बताया और ये भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो है हमारे यात्री जो है बहुत ही श्रद्धा आस्था के साथ जा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रसन्नता के साथ भी, क्योंकि मौसम जो है सुहाना हो गया है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई जिसकी वजह से मौसम जो है सुहाना हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो तीर्थ यात्री है गर्म क्षेत्रों से आते हैं, और फिर यहाँ के इस खूबसूरत से मौसम का जो वो लुत्फ लेते हैं, इसको बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ज़िला प्रशासन जो है उन्होंने तीर्थ यात्रियों से जो है निवेदन भी किया है कि वे यात्रा के लिए तय समय का प्लान जो है वो करें और पवित्र गुफा की ओर जाने के लिए जो बालताल एग्जिट पॉइंट जो है उससे निकलने का समय 9 बजे तय किया गया है, और इस समय के बाद कभी कहीं भी या किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की इजाज़त जो है नहीं दी जाती है।
2: जी सायका, जी सायका, यहाँ पे अपने जो है हमारे यात्री उनको और सबको हमारे श्रोताओं के साथ भी ये मैं कहना चाहूँगी कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी यात्रा है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हिमालय की कठिन वादियों का सफर तय करते हैं। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि हर यात्री अपनी यात्रा जो है सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद तरीके से पूरी कर सके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए इस वर्ष इसका नाम है सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई है। यात्रा मार्ग पर अच्छी सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हर श्रद्धालु जो है निश्चिंत होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके।
1: बहुत ही सही कहा आपने, और यहाँ पर अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो विशेष प्रसारण में श्री अमरनाथ जी के विशेष

0: तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि हर श्रद्धालु जो है निश्चिंत होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके।
1: बहुत ही सही कहा आपने, और यहाँ पर अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो विशेष प्रसारण में, श्री अमरनाथ जी के विशेष प्रसारण में हमारे संग बने हुए हैं FM पहलगाम और FM बालतल के माध्यम से।
0: और साथ ही साथ ये भी अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि कुछ जो हमारे यात्री

0: वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, बट कहते हैं ना जंग जीत ली। बहुत अच्छा लगा, कश्मीर वाकई में बहुत देखने लायक चीज है, बाकी पहाड़ियाँ सदाबहार, बहुत अच्छा लगा।
1: मेरा नाम गीता है और मैं दिल्ली फरीदाबाद से आई हूँ। मैं
2: क्या है मन?
1: मेरी इच्छा ये है कि मैं एक बार अपनी लाइफ में बाबा जी के दर्शन पालूँ बस, और मेरी कोई इच्छा नहीं है, और आज वो मनोकामना भी पूरी हो गई है क्योंकि जंग जीत कर आ रही हूँ।
2: अच्छा, यहाँ
1: बहुत बहुत सुंदर है, यहाँ हर चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
3: अजय लोहिया नाम है मेरा, और अभी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी हम, और हम रास्ते से 2-3 दिन से परेशान होते हुए आ रहे हैं। बहुत ज्यादा रस हो रहा है यहाँ पे आने का, हमारे बाबा जितनी परीक्षा लेंगे उतना ही आनंद आएगा आगे जाके। बाबा के दर्शन हो जाए तो आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत अच्छा वो होगा। प्रशासन का बड़ा ठीक उसमें वो लगा है, प्रशासन की कोई वो नहीं है, प्रशासन धीरे धीरे करके भेज रहे हैं जो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे ऊपर, मगर बहुत अच्छी उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है।
4: मेरा नाम है स्वामी स्वधर्मानंद, मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम का रहता हूँ जो बेलूर मठ का हेड ऑफिस है। तो रामकृष्ण मिशन मेरा बिहार में पोस्टिंग है, मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ अभी जा अमरनाथ दर्शन के लिए। तो अभी जा रहा हूँ बलताल होके, 3 दिन इधर रुकने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, तब बड़ी खुशी की बात है बाबा का दर्शन के लिए। तो बस तो अभी निकल गया कन्वे वाले, तो अभी गाड़ी पकड़ ले रहा हूँ, तो बलताल में आज रुकूंगी, कल सुबह मेरा दर्शन का टाइम है तो कल सुबह दर्शन के लिए निकल जाऊंगा।
5: जी श्रोताओं, ये थे कुछ हमारे तीर्थ यात्री जो कि पहली बार यहाँ आए और बहुत ही उत्सुक देखे गए, प्रशासन गए, और साथ ही साथ प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत ही प्रसन्नता जो है इन्होंने व्यक्त की।
6: जी सागर, यहाँ पे ये भी कहेंगे जहाँ प्रशासन आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए आवश्यक इकदाम उठा रही है, आपके लिए हर सुविधा जो है उपलब्ध करा रही है, लक्ष्य यही कि तीर्थ यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमारा भी यहाँ पर यही प्रयास होता है कि आप तक क्षण क्षण के अपडेट्स पहुँचाए ताकि आपकी यात्रा जो है कुशल और मंगलमय हो।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी
1: से। मेरा नाम बबीता रानी है और
2: श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
3: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और विभिन्न चैनल्स पर भी हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे, ये 3 बजे का अपडेट हमारे पास आया है। तो 3 बजे तक जो है 21,394 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या रही है 14,000।

919 महिलाएं, 5,900 बालक, 187 साधु, 146 साध्वीज, 31 साध्वीज 30 क्षमा कीजिएगा साध्वीज 30 ट्रांसजेंडर 9 और सुरक्षा कर्मचारी की बात करें तो उनकी संख्या रही है 203। ऐसे कुल मिलाकर जो है 21,394 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे साथ बने रहिए, FM बालतल और FM पहलगांव के संग।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और अभी अभी 4 बजे तक की जो रिपोर्ट है वो आपके साथ साझा करेंगे। कुल मिलाकर 24,013 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन जो हैं आज 4 बजे तक किए हैं, और जिनमें पुरुषों की संख्या 16,782, महिलाएं 6,582, बालक 200, साधु 176, साध्वी 31 और ट्रांसजेंडर 9, और वही सुरक्षाकर्मी भी इनमें 233 शामिल हैं, जो कि कुल संख्या आज 4 बजे तक की बनती है 24,013।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग श्रंखण के अपडेट्स लेकर हम आपके लिए यहाँ पे आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो आपको बता दे अभी हमारे श्रीनगर के लाल चौक में कुछ यात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके साथ बरह रास हमारी साथी साइका रफीक बात कर रही हैं और उनके साथ साइका रफीक के साथ इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री सुरेश चंद मीना भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं यात्री के विचार अनुभव क्या है यात्रा को लेकर, आइए जानते हैं साइका रफीक से। जी साइका रफीक
1: जी शाहिना, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ यात्रा के इस स्पेशल प्रसारण में। आइए श्रीनगर के लाल चौक से सुनते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो यात्री निवास लाल चौक के घंटाघर के करीब है, इस ट्रस्ट के एक मेंबर से बातचीत।
0: जी
1: आपका नाम क्या है?
2: वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम शिवांग धवन है।
1: शिवांग जी, आप ये ट्रस्ट में कब से काम करें और ये ट्रस्ट कब से चल रहा है?
2: ये लास्ट 20 वैसे तो बहुत पहले का ये ट्रस्ट है, लेकिन लास्ट 14

0: में हिसाब रखना भी नहीं चाहिए। यात्री आ रहे हैं, वो यात्रा करें, यहाँ की कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय करें, एंड एक अच्छा मैसेज जाए सबकी तरफ कि हम कश्मीरत में बिलीव करते हैं, वी आर कश्मीरीज एंड वी एंजॉय विद एवरीवन। थैंक
1: यू सो मच।
0: यू वेलकम मैम।
1: यात्री जुड़ी हैं, इनसे जानते हैं ये कहाँ से आई हैं और इनका नाम क्या है। जी मैम, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम स्मिता शर्मा है, मैं राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता सिटी से आई हूँ।
1: आप अमरनाथ जी यात्रा के लिए आई हैं, आपको अब जाना है कि आप दर्शन करके आई हैं?
2: जी हम दर्शन करके कल उतर चुके हैं वापस
1: जी,
2: और आज श्रीनगर पहुंचे हैं।
1: तो आपके जज्बात, आपके फीलिंग्स क्या है इस वक्त?
2: हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ की गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हमको कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे रहना करना खाना सब हमको बहुत अच्छा सा फ्रीस मिल रहा था, और स्वच्छ वातावरण मिला हमको यहाँ पे।
1: बिल्कुल। और आप इससे पहले आई हैं कभी?
2: नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन सुना था, लेकिन आज जब हमने देखा आके कि यहाँ बालटाल के अंदर और यहाँ बाबा अमरनाथ के यहाँ पे इतनी सेवाएं मिल रही है कि जनता खुश होके जा रही है, भक्तजन दोबारा आने के इच्छुक रहते हैं, हम दोबारा दर्शन करने के वापस पहुंचे।
1: बहुत खूब। और आपके जज्बात क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है दर्शन के बाद?
2: दर्शन के बाद ये लगता है कि बस यहीं रहे जाए, नहीं कश्मीर से।
1: और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी?
2: बहुत अच्छी लगी हमको, कोई तरह से जो बताते थे कि यहाँ डर है, हमको डरना मात्र का डर नहीं रहा यहाँ पे।
1: बिल्कुल।
2: और ऐसा लगता है जैसे अपने लोग ही यहाँ निवास कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आप कोई जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, जो भी आ रहे हैं वो बेझिझक यहाँ आइए, दर्शन करिए और आनंद लीजिए इधर का।
1: जी बहुत शुक्रिया। जी शाहिना
3: जी, बहुत बहुत
1: कर सकते हैं अभी फिलहाल, हम दोबारा आपसे जुड़ते हैं।
3: बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ इन्हीं की सेवा में बैठे हैं, तो सबके लिए ये भजन।

0: विशेष प्रसारण के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हुए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। एक बार फिर हमारे साथ सायका रफीक जुड़ चुकी हैं। आइए क्या कुछ इनकी जो है यात्रियों के साथ बात, तो अभी ये सायका रफीक का कहना है, ये ऑनर से बात कर रहे हैं जो यात्री निवास के ऑनर हैं, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ उनके विचार है ऑनर के। जी सायका
1: जी, शाहिना शुक्रिया। आप से करना चाहेंगे जी, आप का नाम पहले जानना चाहेंगे?
2: शरद, मेरा नाम है शरद खोसला।
1: और ये जो यात्री निवास आपने खोला,
2: यात्री निवास है, सबसे पुरानी बिल्डिंग 106 साल की है
1: जी। जी,
2: तो पहले 90 में तो खराब हो गई थी, फिर 90 के बाद हमने रेनोवेट कर दी सारी। अब 70 कमरे बनाए हुए हैं और साथ में 500 आदमी रह सकते हैं, और भंडारा भी बड़ा अच्छा चल, लखनऊ से आते हैं भंडारा करने के लिए, डेली का 500-600 आदमी खाना खाते हैं सुबह, और हमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट अच्छा है, और गवर्नमेंट की यहाँ की पब्लिक की बहुत साथ देती है। हम लोग इतना नहीं देते मगर हमारे साथ उनके बहुत कोऑपरेट है।
1: और यहाँ पर एक साथ आप कितने यात्रियों को अकोमोडेट कर सकते हैं?
2: 400।
1: अब ये सारा फ्री में मिलता हमको, खाना पीना?
2: ना ना, खाना पीना नहीं, ओनली फॉर रेंट लेते हैं रहने के लिए, खाना पीना सब बाहर
1: जी। और जो यात्री हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आती?
2: नहीं नहीं, कुछ बस सब सुविधा है।
1: आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर रहना चाहेंगे उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे?
2: देखो जी, सबसे पहले बात है जितना हमारे पास है उतना हम अकोमोडेट कर देते हैं, नहीं होते तो वे दूसरी जगह भेज देते हैं उनको। वैसे प्रेफर लोग यहाँ ही करते आने के लिए, मगर हमारे 400-450 की ज्यादा नहीं है। अब हमने दूसरी जमीन ली है
1: जी,
2: अब जब पेमेंट खुद आप पैसा भेजेगा तो हम दूसरी बिल्डिंग तैयार करेंगे इधर अपने मोरबा, हमारी अपनी मंदिर की जमीन ले ली हमने अपनी
1: जी। थैंक यू सो मच,
2: बड़ा सा बनाएंगे बस।
1: थैंक यू सर।
2: थैंक यू।
1: अभी हमसे जुड़ चुकी हैं और एक यात्री, इनसे जानते हैं ये कहाँ से आई हैं और नाम क्या है इनका, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम नीलम मनोज दैतुले है, मैं महाराष्ट्र से हूँ।
1: आप पहली बार आई हैं?
3: हाँ, मैं यात्रा के लिए पहली बार आई हूँ।
1: अभी जा रही हैं कि आप वापस आ चुके?
3: नहीं, मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरा दर्शन हो गया है।
1: तो कैसा लग रहा है आप?

0: मेरा जो दर्शन हुआ वो बहुत इतनी खुश हो गई ना।
1: दोबारा कब आने का इरादा है?
0: अगले साल जरूर आऊंगी।
1: थैंक यू मैम।
0: ओके थैंक यू। जी सर, आप कहाँ से और क्या नाम है आपका?
2: महाराष्ट्र से, मनोज दहीतुले।
0: मनोज सर, आप यात्रा करके आए हैं क्या? अब जा रहे हैं?
2: नहीं, करके आए।
0: तो कैसा रहा दर्शन? अच्छे से हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं आई?
2: नहीं, दर्शन अच्छे से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है।
0: और जो आपके जज्बात हैं अभी, कुछ तो अपने जज्बात के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ने सुविधा भी अच्छी दी है, पानी हर जगह पीने के लिए। अब रास्तों का भी काम चालू है, बड़े रास्ते हो गए, सिक्योरिटी भी अच्छी सी है।
0: और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप?
2: नहीं, आना चाहिए उन्होंने।
0: जी थैंक यू जी। नमस्कार।
1: नमस्ते जी, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम स्वाति संदीप मापुड़े।
1: जी,
3: महाराष्ट्र से आई हूँ।
1: जी जी, तो यात्रा करके आई हैं आप?
3: हाँ, मैं कल ही यात्रा करके वापस आई हूँ। 4 बजे मेरा पालताल से 4 बजे तक आ गई मैं।
1: जी जी।
3: हाँ,
1: तो आपने स्वेटर पहनी हुई है, सर्दी लग रही है आपको?
3: वो पालताल में बहुत ठंड थी ना, बारिश हो गई।
1: तो इसका मतलब है कि जिनको भी आना हो तो वो उन्हीं कपड़े साथ लेकर आए?
3: हाँ, सब तैयारी के साथ आए।
1: गर्म कपड़े। पहली बार आई थी यहाँ?
3: हाँ, पहली बार आई थी।
1: कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं ये सब देख के मेरा मन भर आया था, ये सब देख के।
1: होता है सबके साथ ऐसा होता है। जी,
3: ये मेरी अमरनाथ की पहली यात्रा है पाल की।
1: दोबारा पाना चाहेंगे?
3: अगर उन्होंने बोला तो जरूर आऊंगी।
1: जी जरूर। और जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा पर, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी?
3: हाँ, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन वहां से करवा के आए, ताकि यहाँ आने पर उनको
1: दिक्कत ना हो।
3: और अपने अपने साथ कोई खाने की पीने की कोई जरूरत चीजें नहीं लाए, सिर्फ अपनी
1: जरूरत
3: जो कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह वैसे ही लाए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सेवाएं हैं।

0: जी शाहिना
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया साइका, और साथ में आपके साथ ही जो है अभी आप के साथ, तो उसका भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीना सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और आसफा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ आपको बता दे, ये कुछ आपने सुना, हमारे जो यात्री आ रहे हैं या जा रहे हैं दर्शन के लिए, और दर्शन करके जो आ रहे हैं वो कितने प्रसन्न सा अपना जो विचार, अपने विचार जो हमारे साथ साझा कर रहे थे, हमारे साथ ही साइका रफीक के साथ साझा कर रहे थे, और कितने खुश वो नजर आ रहे थे प्रशासन से, प्रशासन ने जो सुविधा रखी है, कितने खुश आ रहे थे वो। और साथ ही साथ वो इस चीज पर जोर दे रहे थे कि रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लेनी चाहिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन पहले ही करेंगे हम, तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन के बगैर, तो बहुत हो सकता है बहुत कुछ हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इसलिए बेटर है कि पहले ही रजिस्ट्रेशन करें और यात्रा का आनंद लें।

0: जी श्रोताओं, एक बार फिर साइका रफीक हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुतियात्रीज के साथ बात करेगी, और साथ में मीना सर भी है और आसफा मैम भी है। जी साइका
1: जी, शाहिना शुक्रिया। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम अनुराग गुप्ता है।
1: अनुराग जी, कहाँ से आप?
2: मैं यूपी लखनऊ से हूँ।
1: आप पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं?
2: हाँ, नहीं नहीं, मैं जाके आ गया हूँ। 3 तारीख को मैं गया था, 4 तारीख को मैं वापस आ गया।
1: ये आपकी पहली यात्रा थी?
2: नहीं, तीसरी यात्रा थी मेरी।
1: तीसरी बार?
2: हाँ, पहली यात्रा जो थी पहलगाम से थी, दूसरी बालटाल और तीसरी भी बालटाल से।
1: तो इतनी बार आप आ चुके हैं, हर बार आपको इम्प्रूवमेंट लगा जो यहाँ?
2: हर बार, हाँ हर बार मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा है, क्योंकि पहले हमने देखा तो रास्ते नहीं बने थे, अब रास्ते बने। पहली बार रास्ते बने, दूसरा रास्ते चौड़े हुए, इस बार रास्तों पे टाइल्स भी लग गई हैं और जो साइड की जो रेलिंग थी वो भी लग गई है, जिससे कि यात्री जो है दुर्घटना नहीं होगी। पानी जो बहेगा वो भी किनारे से बहेगा, तो उससे पानी से जो दुर्घटना होगी वो भी नहीं होगी। खाने पीने की व्यवस्था हुई रास्ते रास्ते, वाटर कूलर लगे, पानी की पाइप्स लगे हुए हैं, टोटके लगी थी जिससे पानी हम लोग
3: गर्म पानी मिले,
2: गर्म पानी मिल रहा था, लंगर लगे ही थे। बेसिकली मेडिकल कैंप भी अच्छे थे, फैसिलिटी हर 2 से 3 किलोमीटर पे मेडिकल कैंप मिल रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर, एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सारी टीम्स और आर्मी और जेके जम्मू की जो पुलिस है वो सारे लोगों ने, प्रशासन ने, सारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी पाई मैंने।
1: सरकार की जानिब से भी फैसिलिटीज?
2: हाँ जी जी।
1: और जो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी है
2: बहुत अच्छी है, वो हमें अभी तक तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी हमें कोई कमी लगी। और इससे पहले मैं पहलगाम में था, 2 बार से मैं यहीं पे हूँ, और श्रीनगर से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सपोर्ट है आप सभी से, बहुत अच्छा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: सभी लोग आए और ये मतलब पवित्र गुफा है और दर्शन करें, अगर शिवलिंग पिघल भी गया तो भी वो आए और यहाँ पे लोगों के मेहमान वाले। हाँ, अभी पिघला नहीं है, लेकिन पिघल जाए तो इसलिए डर से ना आए कि पिघल जाए तो क्यों आए, उनकी श्रद्धा है वो आए, क्योंकि पवित्र गुफा का दर्शन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आए, यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ से बहुत एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, लोग बहुत अच्छे हैं, जैसा कि हम दुनिया देख रहे हैं वैसे नहीं है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप समाप्त कर रहे थे श्रीनगर के लाल चौक से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा पर एक खसूसी लाइव रिपोर्ट। मैं साइका और मेरे साथ इस टीम में मिसेज आसिफा मसूदी और सुरेश मीना जी। आइए

0: जोड़ते हैं वापस आपको स्टूडियोज में शाहिना ऋषि के साथ। जी शाहिना,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आसपा मैम का और श्री सुरेश चंद मीना सर का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी श्रोताओं, बने हुए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग FM पहलगाम 100.1 MHz और FM बालतल 103.7 MHz पर। और शाहिन जी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ श्रद्धालुओं से बात जो है उनकी हमारी साथी सायका की हुई, और जो कि बहुत ही जो पहली बार आए थे, जो बहुत उत्सुक दिखाई दिए, और जो यात्री जो है वहाँ से लौट कर आए थे तो वो भी बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे थे कि वो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशंसा वो बहुत कर रहे थे, और प्रशासन सुरक्षा और चिकित्सा सभी व्यवस्थाओं से बहुत ही प्रसन्न नज़र आए। जो अपने वो जो विचार हैं साझा कर रहे थे, हमने वो अपने श्रोताओं तक भी पहुँचाया।
1: जी बिल्कुल, और सरकार यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यात्रा की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, अन्य सुरक्षा एजेंसीज और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक बेहतरीन यात्रा की कोशिश

0: जी जी
1: पूरे यात्रा मार्ग पर चेक पॉइंट्स, नाके, सर्विलेंस पॉइंट्स, क्विक रेस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं, जहाँ साइका आधुनिक सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन और अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से पूरे यात्रा मार्ग पर नजर रखी जा रही
0: है। हम ये कह सकते हैं कि पूरी पूरे वो ना सुरक्षा का इंतजाम जो है, व्यवस्था जो है की हुई है।
1: हर मुख्य पड़ाव पर सुरक्षा कर्मचारी केवल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सायका, वे सेवा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी यात्रा को सहायता की आवश्यकता हो, रास्ता पूछना हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, तो सुरक्षा कर्मचारी तुरंत मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको भी बता दें कि यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड यात्री के लिए RFID कार्ड बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्ड के माध्यम से यात्रा की मॉनिटरिंग और इमरजेंसी जो है रेस्पॉन्स को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपना RFID कार्ड जो है हमेशा अपने साथ रखें और किसी भी चेकिंग पॉइंट पर ज़रूरत पड़ने पर वो दिखाए उनसे। हिमालय की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का सितार मैदानों की तुलना में कम होता है,

0: पैरामेडिकल टीम्स 24 घंटे सेवा में तैनात रहते हैं। यहाँ जो है ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है और जो
1: पल्स वगैरह
0: पल्स
1: जी
0: पल्स और अन्य जो है सेहत के लिए जो भी जांच जरूरी है उसके लिए सुविधा उपलब्ध
1: रखी गई
0: कराई
1: है
0: गई
1: जी।
0: है। जी हाँ, इसके अलावा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी और जो भी ज़रूरी है,
1: जो भी जो जरूरी
0: ज़रूरी
1: व्यवस्थाएं
0: चीज़ें
1: हैं
0: जो
1: जी
0: है वो उनकी व्यवस्था की गई है और सब चीज़ों को यात्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यदि किसी यात्री को ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो या चक्कर आए या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या जो भी जिसका भी सामना करना पड़े तो वो ट्रेनड जो है मेडिकल टीम जो है तुरंत उपचार करती है उसके लिए। गंभीर स्थिति जो है एम्बुलेंस सेवा होने पर उच्च स्तर की मेडिकल सहायता की भी उपलब्ध कराई जाती है। यात्रा के दौरान डॉक्टरों के बहुत महत्वपूर्ण सलाह होती है, अपने शरीर की बात सुने, यदि अधिक थकान महसूस हो, सांस फूल रही हो, सीने में दर्द हो या लगातार चक्कर आ रहे हो तो देर किए बगैर नज़दीकी मेडिकल कैंप से संपर्क कीजिए। यात्रा में जल्दबाजी कभी भी उचित नहीं है सायका। याद रखें, बाबा बर्फानी के दर्शन तभी सुखद होंगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूब।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बोतल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
3: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम पालचल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। डीटीएच की आराधना सर्विस मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुनते हैं।

हमारी हेल्पलाइन जो है 9596990954 9596999954, और इसके अलावा जो है ईमेल एड्रेस भी है हमारा akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com, और टोल फ्री नंबर्स भी है श्रीनगर के लिए 1800-1807-8919 यानी 1800-1807-199, और जम्मू के लिए 1800-1807-198 1800-1807-198। तो इन नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या जो हमने आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं इन पे भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वैसे ही आप मैसेज कीजिए, और हमारा जो ये प्रसारण है आप हमें इसके बारे में बोल सकते हैं, या आपको कुछ भी दुविधा हो आप इन नंबर्स पे अपने लिए जो है सहूलत फराहम कर सकते हैं बस। और आप ये भी हमारे प्रसारण के लिए भी कह सकते हैं कि हमारा प्रसारण कैसा जा रहा है, अगर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें वो सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जो है आपके सुझाव जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन नंबर्स पर या इन मैसेज करके कॉल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रसारण को सक्षम बनाने में आप हमारे सहायक बने।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, 5 बजे तक जो है 26,009 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या रही है 18,287, महिलाएं 6,995, बालक 217, साधु 211, साध्वीज 32, ट्रांसजेंडर 9 और सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो 258। इस तरह कुल संख्या बनती है 5 बजे तक जिन भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं 26,009।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी के संग। जी हाँ, जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। अभी कुछ देर में आप आरती का आनंद लेंगे जो हमने रिकॉर्ड की है बालतल बेस कैंप में। कुछ क्षणों में आप समाप्त करेंगे आरती और हम सब मिलकर आरती का आनंद लेते हैं।
1: हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजानन मूर्ति गणाधिपतिं कपित्थ जम्बो पदचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघटेश्वर पाद पंकजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।

0: साहज सहज श्री बाबा दीदार सहज श्री बाबा ब्रह्म सहज श्री बाबा संगत सहज श्री बाबा अनूप सहज श्री बाबा बजान सहज श्री बाबा बहादुर सहज श्री बाबा महबूब सहज श्री बाबा तलक शाह जी महाराज बंद के वाले होंगे चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम
0: साढ़े बारह घरानों के चरण कमलों में ध्यान धर के बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम
0: गुरु महाराज सच्चे पिता जगत के वाले चार पहर दिन सुख का बिताया है चार पहर रात्रि भी सुख की बितानी है आठों पहर सुखाले सुख करे सवालियों के सवाल पूरे करे बंदी मानव की बंद खलाश नगर खेड़ाया वाद रहे राजा राज करे प्रजा सुखी बसे साधु का शंकर मुक्का मिल भजन का प्रताप दुख कलेश का नाश अड़े तो झड़े शरण पड़े तो तरे काम सच्चे वादा सुत्रेशा जी महाराज आप करें डेरा बस्ती आवाज रहे दो लंगर चलते रहे।

संध्या समय की अरदास तेरे सचखंड में प्रवार अक्षरवाधी घाटे भूल जोग वक्षणहार सद्गुरु बाबा महाराज करो प्रवाण प्राणी मात्र का हो कल्याण शुरू करो।

0: तो आपको बता दें, आप बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद नजार, इरशाद नाइको और शौकत अहमद। इस विशेष और मैं हूं आपकी साथी उद्घोषक शाहिना ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक साइका सलीम।
1: और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूकवानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखुन। प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि,
0: जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ?

0: नारी बिलो कहीं हरसिहि निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनु। और राम ही चितव भाई जिहि सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को,
4: जहां जहां जाई कुंवर बर दो तहां तहां चकित चितव सबको।
5: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूँ भव धनुष विशाला मेल ही सी राम उर्माला।
4: बिना धनुष तोड़े ही क्या बात कही तुमने तोरे हूँ धनुष ब्याहू अब गाहा बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे एक बार कालव किन होऊ सियहित समर जितब हम सोऊ।
5: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
4: सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु संभ उर्वासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
2: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
2: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
6: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण सुनिए। पर्ण विदेह कर कहे हैं हम पूजा उठाए विशाल।
7: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है कठोर है ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जोतोरा तिरुभवन जय समेत वैदे ही बिन ही विचार बरई हटते।
2: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं
5: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
2: वे समझदार हैं और वो देखो वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को। अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
7: बेकार जान पड़ता है और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई भट बाहु बल।

0: अधिक अधिक गरुआ।
1: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं, वो देखो। पर
0: दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
1: सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
0: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
1: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह।
0: चुप चुप चुप, जनक जी कुछ कह रहे हैं।
1: शान शान शान।
2: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या, बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जो जनते हूं बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते हूं ना हसाई।
1: अब क्या होगा?
0: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
1: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भई भौहे, रद पट फरकत नैन रिसोहे।
3: हे दात, रघुवंश सिंह महु जह को होई, ते ही समाज अस कही ना कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमि टारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपेनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
1: सुना?
0: पर वो देखो, बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
1: ना, सय नहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
0: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं।
1: जा रहे हैं क्या?
0: बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
4: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा।
5: ऐसे की देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्षु विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराजु ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं रामू गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करे तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही।
6: ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो ना, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा। रबी मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
7: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो दो सेवा।

0: बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी।
1: सखी सखी, तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो।
2: राजकुमारी, चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल।
1: बोलते क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी,
2: लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
0: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
1: आंखें खुलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
3: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखे रघु बंस मनी, ताके हर को दंड, पुल के गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंड।
4: हे दिशाओं के हर

0: हो सजग सुनि आयसु मोरा।
1: ये क्या हुआ, कैसे दामिनी दमकी?
2: आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
1: वही तो धनुष है,
2: उठा भी लिया।
1: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर किसे छोगी राजकुमारी? समझी नहीं सकी, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: ये भी कोई बात है?
1: खड़ महीनों का बात।
0: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे।
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?
3: शान शान, अरे आप लोग बैठे।
4: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
3: है। ये कौन आ रहा है? बिशप कंठ और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला,
5: कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
3: रघुपति परशुराम, परशुराम।
6: हे हे राजागण, आप लोग शांत भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भृगुकुल भास्कर मुनि के शरीर में वीर रस के साकार स्वरूप परशुराम जी सभा में पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
7: दंडवत प्रणाम,
8: प्रणाम,
9: प्रणाम,
10: दंडवत प्रणाम,
11: दंडवत प्रणाम,
12: दंडवत प्रणाम,
13: दंडवत प्रणाम,
14: दंडवत प्रणाम,
15: दंडवत प्रणाम।
16: विदेह राज, आपकी इस रंग

0: स्थली में कहो काह अति भीर।
1: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
0: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
1: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
0: मेरे आराध्य देव का धनुष, कहूं चढ़ चनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
2: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
0: मेरा दास? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
3: मुनिवर, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू नासी फिर सकीनी गोसाई, एही धनु पर ममता के है तू।
0: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार।
3: सुनहु देव, सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरो।
0: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार, देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, कहे देता हूं मात पित ही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोर।
3: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, पुनी पुनी मोह ही देखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरे जाए, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते, इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर।
0: कौशिक, सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु, काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई, तुम हटकौ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
3: हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है, अपने मुंह तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं सतो सु तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा, सूर समर करनी कर कहीं ना जना वहिया, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रताप। लेकिन आप मुनिवर, आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा।
0: सुनिए विश्वामित्र, अब जन देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, बाल बिनो की बहुत मैं बाचा, अभी यह मरण हार भा साचा।
4: क्षमा करे बंधुवर, इससे अपराध हुआ, बाल दोष गुण गनहिन साधु,
0: घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है, फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ, सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो त्यू श्रम थोरे।
3: हे भगुपति परशुराम, परसु दिखा बहु मोही, विप्र बेचारी पचाऊ नृप द्रोही, मिले न

0: तो भटर अनगार विज देवता घर ही के बाड़े
1: अनुचित है
2: अनुचित है
3: नाथ करहु बालक परछोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तौ की बराबरी करत आयाना जौ लड़िका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरी करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी
2: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम तोर भ्राता बड़ पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही नीच मीच सम देख न मोही
0: सुनिए मुनिवर क्रोध पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करही चरही वित्व प्रतिकूल मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करी अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठी हो ही पाए पिराने जो अति प्रिय तो करिय उपाय जो रिय को बरगुनी बोलाए
2: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे
3: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिये नहीं काना बररे बालकु एक सुभाव इन्हीं न संत विदुष ही काऊ तेही नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधु बंधव गुसाई मौ पर करिये दास की नाई कहिये बेग जही बिधिर सिचाई मुनि नायक सोई करो उपाय
2: राम मेरा रोज कैसी जा सकता है जब अजहू अनुज तब चितव अनय से मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए नहीं एही के कंठ कुठार न दीना तो मैं काह कोप कर कीना ये भी कोई बात है गर्व सृवही अब निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछति देखाऊं जियत बैरी भूप किशोर
3: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें आपके कुठारों के आगे मेरा सिर है जहिर से जाई करिय सोई स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु बिप्रवर रोसु बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु बात ऐसी है मुनिवर लक्ष्मण तो लड़का ही है देख कुठार बान धनुधारी भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाए उतरोते ही दीन्हा यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता क्षमहु चूक अनचानत केरी चहिए विप्र उर कृपा घनेरी हे नाथ हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि सभी परम पुनीत विप्रवर सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे
2: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान सुन तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं चाप स्रवा सर आहुति जानू कोप मोर अति घोर किसानू समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशु आई मैं एही परसु काट बल दीने समर जग जप कोटे ने कीने तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है। तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम, ये धनुष क्यों तोड़ डाला? तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहू जीत जब उठा रहा।
3: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं? देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना, जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु तहि पावर आना, कहो सुभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
2: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखर गई है, पर फिर भी राम रमापति करधन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु।
1: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
4: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
5: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
6: अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सदगुरु साहिब, जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुककों मुनिवर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइये सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान दस द्वारे का देहरा तामे ज्योति बिछाए ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।